0: माया जोड़ी लाख करोड़ी अजहु ना तृप्ति भयो। वृद्ध भयो अब आलस उपजी कफनित कंठ नयो। संगति कब होना कीन ही तूने विरथा जन्म गयो। इट्स वेरी ब्यूटिफुली डिस्क्राइबिंग
1: टॉक्स अबाउट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ एट 5 year old व्हाट यू डिड, 10 year old व्हाट यू डिड, 20, 25, 30 एंड व्हेन नथिंग वाज देयर यू बिकेम, व्हेन यू बिकेम ओल्ड यू बिकेम सो टायर्ड दैट देयर वाज नथिंग, नो एनर्जी लेफ्ट टू डू एनीथिंग
0: एल्स एंड दैट्स द टाइम यू थिंक दैट यू विल थिंक ऑफ लॉर्ड एंड इट
1: नो एंड यू थॉट ओ माय गॉड आई लॉस्ट एवरीथिंग, नथिंग, आई डिडंट डू एनीथिंग प्रोडक्टिव इन दिस होल लाइफ।
2: यही तो माया है एंड वी नो इट बट वी फॉरगेट इट।
3: दैट इज व्हाट the bhakta is asking, why do we forget? So we'll come to that in the next episode. Why do we forget and what is this mystery? So dear listeners, so we continue that in the coming episode. I think there is more to discuss on this first segment, chapter 6 of Sandhya Nivarini. As always, please feel free to join us. You can write to listener@radiosai.org and send us your comments on our WhatsApp number 9393-258-258. Let's ensure that every moment Bhagwan has given us, every present becomes a present that we can make to Him about how we have lived a life in service, in Namasmarana and in this beautiful journey from I to we to He. Thank you so much. Sanam.
4: Sai Ram. You just heard an episode of our radio program, Vahini Satsang. This is a segment of Radio Sai's Thursday Live, hosted by Bishu Prushti, and today's episode was first broadcast on 10th October, 2019. Dear listeners, we hope you like this program. Please send us your feedback by either email or WhatsApp. Our email ID is listener@radiosai.org and our WhatsApp number is 9393-258-258. Thank you and loving Sai Ram from Prashant Nilayam.

सब न से गोपाल को जस गाओ प्राणी अकथ कथा साची प्रपूर्ण ज्योति जो समानी रहाओ तृष्णा पूख सब नासी संत प्रसाद जपया बनासी रहन दिनस प्रभ सेवक मानी हर मिलने किए निशानी मिटे जंजाल होए प्रभ दयाल गुर का दर्शन देख निहाल परा पूर्बला कर्म बन आया हर के गुण नितरस ना गाया हर के संत सदा प्रवान संत जना मस्तक निशान दास की रेण पाए जे कोए नानक तिसकी परमगत होए रामकली महला पंजवा दर्शन कौ जाइए कुर्बान चरण कमल हृदय तर ध्यान तूर संतन की मस्तक लाए जन्म जन्म की दुर्मत मल जाए जिस भेड़त मिटे अभमान पार ब्रह्म सब नदरी आवे कर कृपा पूर्ण भगवान रहाओ गुर की कीर्त जपिए हर नाओ गुर की भगत सदा गुण गाओ गुर की सुरत निकट कर जान गुर का शब्द सत कर मान गुर बचनी समसर सुख दुख कदे ना व्यापै तृष्णा भूख मन संतोख शब्द गुर राजे जब गोबिंद पढ़दे सब काजे गुर परमेसर गुर गोबिंद गुरदाता दयाल बख्शिंद गुर चरणी जा का मन लागा नानक दास तिस पूर्ण भागा राम कली महला पंजवा किस पर वासै बिचरै भवन मूड मुगद तेरा संगी कवन राम संगी तिस गतनी जान पंच बटवारे से मीत कर मान सो कर सेव जित उदरै मीत गुण गोविंद रविया दिन राती साध संग कर मन की प्रीत रहाओ जन्म बिहानो अहंकार अरवाद तृप्त नयावै बिख्या साध परमत परमत महा दुख पाया तरी

हर चरण कमल सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साई तना। रहाओ उन्ने काज न होवत पूरे, काम क्रोध मसद ही चूरे। करे बेकार जियर कह ताई, गाफल संग न तसुआ जाई। धरत तोह अनक छल जान, कौडी कौडी कौ खाक सिर शान। जिन दिया तसेना चेतै मूल, मिथ्या लोभ न उतरै सूल। पार ब्रह्म जपहे दयाल, इह मन होवा सादरवाल। हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साच ऐसा समाए। राम कली महला पंजवा, राजा राम की सरनाए। निरपो पय गोविंद गुण गावतो, साध संग दुख जाए रहाओ। जां कै राम बसै मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दासां देसा काहे करै। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुरु उपर कुर्बान। गुर परमेसर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जस होए दयाल। पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो पव जल तरै। अमृत पीवाओ साध प्यारे, मुखी उजर साचै दरबारे। अंध करो तज सगल बेकार, नानक हर जप उतरो पार। राम कली महला पंजवा, इंदन ते बै संतर भागै। माटी कौ जल दै दिस त्यागै, ऊपर चरण तलै आकाश। कटमै सिंध की उपरगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप। निमख न बिसरै जी भगतन कै, आठ पहर मंता को जाप। रहाओ प्रथमे मख

मनसा मार मन सहे समाना बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत मिलाई, हां गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुलंब है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावै सा पूजा होवै पाणा मन वसाई, पूजा करै सब लोग संतो मन मुक्थाए ना पाई। शब्द मरै मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिवलाई, बिन नामे होर पूजना होवी भरम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करै पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवै सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावै संतो वंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणै संतो कूड़ करै वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़ै लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणै गत में तो तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावै ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणै सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावै आप गवावै दर साचै शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणै सच नाम लिवलाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सखाई, सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक भेख करै फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करै दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपनिया भगता नो आपे तुठा अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिखम विचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावै बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द सवारी। काया कंचन शब्दे राती साचै नाए प्यारी, काया अमृत रही पर पूरे पाइए शब्द विचारी। जो प्रभ खोजै से ही पावै होर फूट मोए हंकारी, बादी बिन सह सेवक सेवै गुर कै हित प्यारी। सो जोगी तत् ज्ञान विचारे हम मैं तृष्णा मारी, सतगुर दा

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर धंधा लाई, तिसै श्री बो तां सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए, अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे, तिसनो तिल ना तुमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे, कीमत कह न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम भुलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। एक ना नामो आप पुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा, करत पावस बढ़त बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो, जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रया विस्माद, मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। किन्ही किया परविरत पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंगम सादे, मोहे दीन हर हर आराधे। तेरा भरोसा प्यारे, आना जाना वेसा रहाओ, किन्ही गृह तज वनखंड पाया, किन्ही मौन अवधूत सदाया, कोई कहतो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती। किन्ही कहया हौ तीर्थवासी, कोई अन्न तज पया उदासी, किन्ही पवन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कहया मैं कुलै वड्याई, किन्ही कहया बा बहु पाई, कोई कह मैं तने पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा। किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर त्याया। किन्ही सिद्ध बहु चेट कलाए, किन्ही पेख बहु थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावे पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करे आचार सुकरणी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नावै ओ मन ना प्रबोधे। कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जंतु करया, माटी का ले देहुरा करया। उगत जोत लै सुरत परीखया, मात गर्भ मैं जंतु राखया, राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहाओ। जिन दिए तुद बाब महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी।

रस पीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड नहीं को स्याना कर कृपा जिस देवै नाओ नानक ता कै